0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Burga, burga. Navid bala burga. Mirchi burga.
2: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं।
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ, आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना,
3: तो हुआ कैसे है? मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
3: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?

0: कंडेंसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए,
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब फीस कटेगी नहीं कटेगी?
0: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके। सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना, 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें रख लो, ये भी हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
0: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
1: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीक में रख लो हमें ज्यादा।
0: अरे यार
1: हो गया, आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
0: तो यार ये आपको पहले सोचने दे ना सुनील जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए, हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा, ठीक है? हाँ सुनील जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
1: बताइए,
0: आप मुझे आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ बोलो बोलो।
2: संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
3: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

एंथम हो सकता है अगला गाना वही बन जाए आपके लिए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एक साथ, दिस इज क्लब मिर्ची बेबी।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर ओन थिंग.

बस दोस्तों आज की पार्टी यही फुल टाइम विसल लेती है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ, फुटबॉल का जोश, वीकेंड का स्वैग और म्यूजिक की ये एनर्जी हमेशा साथ रखिए। सेफ रहिए, रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट कीजिए, बारिश का मजा लीजिए और याद रखिए, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगले वीकेंड फिर मिलेंगे और फिर मचाएंगे फुल ऑन हंगामा। टिल देन कीप द म्यूजिक लाउड, द स्माइल्स लाउडर। दिस इज योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका साइनिंग ऑफ फॉर द वीकेंड। टाटा।

स्पेशली तब शुरू होता है जब वॉल्यूम बटन ऊपर जाता है, तो स्पीकर्स रेडी रखिए क्योंकि क्लब मिर्ची की पार्टी अभी तो बस वार्म अप ही कर रही थी। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योम टुगेदर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
2: क्लब मिर्ची विद ऑयोंतिका एंड

सबसे बड़ी ट्रॉफी क्या है पता है? मंडे को ये कह पाना, बॉस वीकेंड वाज वर्थ इट। तो छोड़ो सारी टेंशन और चलो नेक्स्ट ट्रैक के साथ सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. Na virtuala burga. Mirchi burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो।
2: हाँ बोलो कौन?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल, कौन रहा है?
3: बोल कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने।
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने।
2: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर।
2: तो कब आया था, कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तो कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू?
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा। काम करो, एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ू को
4: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या?
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, Ayon Thika, your host for the night on Club Mirchi.

क्लब मिर्ची में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली। मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन्स विनिंग बिकॉज़ द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड। आई एम योर होस्ट मिर्ची ऑन योर ओन थिंग एंड दिस इज क्लब मिर्ची, द साउंड ऑफ द फ्यूचर इज

वीकेंड की बारिश वाली रात और दोस्तों का साथ, बस एक चीज मिसिंग है, थोड़ा और वॉल्यूम। तो स्पीकर्स को काम पे लगाइए। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गाइस इन फुल

Soul, connect your body, enter the simulation.

मुझे ओयोंतिका की दुनिया का हिस्सा बनना है तो कम से हाय टू मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स. नाम की स्पेलिंग है AYANTIKA. रेडियो के बाहर भी स्टोरीज, फन मोमेंट्स, बिहाइंड द माइक लाइफ और लोड्स ऑफ लव आपका वेट कर रहे हैं. लेट्स कनेक्ट. दिस इज क्लब मिर्ची.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे। हम सेकंड वाला चूज करते हैं। क्लब मिर्ची रेडी फॉर अनदर बैंगर। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिकट।

다해도 이 가기 희망기.

sab jaa karo jaan sab jaa karo jaan sab jaa karo।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो
2: बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।

0: आप मुझे क्यों डांट?
1: चुप कर!
0: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मतलब मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
1: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। चुप कर ऐसा तूने!
0: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
0: लेकिन बुरी क्या
1: लगी? एक मारूंगा।
0: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
0: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
1: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
0: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
0: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
0: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
1: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना

जरूर कीजिए, लेकिन अगर ड्रिंक किया है तो स्टीयरिंग व्हील को टच भी नहीं करना। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची। कैब बुक कीजिए, डेजिग्नेटेड ड्राइवर चूज कीजिए या किसी दोस्त का हेल्प लीजिए। एक स्मार्ट डिसीजन पूरी रात को हैप्पी एंडिंग देता है, रिमेम्बर दैट।

0: Richie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

फैन क्लब मिर्ची में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली। मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन इज विनिंग बिकॉज़ द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड। आई एम योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका एंड दिस इज क्लब मिर्ची द साउंड ऑफ द फ्यूचर।

कि शूट आउट हो या अंताक्षरी, प्रेशर सब जगह होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ मिस भी किया तो अगला गाना आपको फिर डांस करवा देगा। ऑफ कोर्स ऑन क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो, दे गा विद यू टुनाइट।

फैक्ट दोस्तों, अगर आप घर पे हो तो लिविंग रूम को स्टेडियम बना दो, और अगर ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी के स्पीकर्स को कॉन्सर्ट बना दो। वीकेंड सिर्फ दो दिन का होता है, एनर्जी अनलिमिटेड होनी चाहिए। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर अंतिका। लेट्स रोल इट।

सिखाई है, टीम वर्क विंस। और वीकेंड भी तभी यादगार बनता है जब अपनी गैंग के साथ हंसी, गाने और मेमोरीज शेयर की जाए। सो कीप द वाइब्स हाई एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

यू नो हर स्क्वाड में एक फ्रेंड होता है जो हर गोल पे कमेंट्री करता है और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे ओयोंतिका AYANTIKA। आई एम अ बॉन्ग एंड हियर्स योर नेक्स्ट सॉन्ग ऑन क्लब मिर्ची।

पार्टी यही फुल टाइम विसल लेती है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ, फुटबॉल का जोश, वीकेंड का स्वैग और म्यूजिक की ये एनर्जी हमेशा साथ रखिए। सेफ रहिए, रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट कीजिए, बारिश का मजा लीजिए और याद रखिए, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगले वीकेंड फिर मिलेंगे और फिर मचाएंगे फुल ऑन हंगामा। टिल देन कीप द म्यूजिक लाउड, द स्माइल्स लाउडर। दिस इज योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका साइनिंग ऑफ फॉर द वीकेंड। टाटा।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो

0: What's up, party people? Good evening. Weekend finally आ गया है. Football fever full power पे और dance floor भी ready है आपके लिए. I'm your host Mirchi Oyonthika and with me is DJ Richard. Let us not mourn Brazil and celebrate football. Goals सिर्फ मैदान में नहीं dance floor पे भी होंगे. तो volume बढ़ाओ, squad को tag करो, lights dim करो और mood को full on celebration mode पे डाल दो. Because this is Club Mirchi. The sound of the future is here. DJ Richard.
1: इन हाथों में जब से है आया ये हाथ तुम्हारा.

चीज कॉमन है, दोनों लैंग्वेज नहीं इमोशन समझते हैं. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर टेक आउट विद यू टुनाइट ऑन लव मिर्ची. तो चाहे आप मेसी फैन हो, हालन फैन हो या बस गुड म्यूजिक का फैन, अगला गाना सबके लिए.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
2: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके। सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम ही देख लो, ये मैं तुम फोन क्यों कर रहा हूँ?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
3: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीक में देख लो हमें ज्यादा।
2: अरे यार
3: हो गया, आप ढूंढ रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से।
3: आप लोगों को पहले मतलब मेंशन करना था यार, आप कैसे कैसे पैसे कटेंगे।
2: आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए।

0: रुकिए,
1: फोन आ रहा, रुक गया।
0: हेलो, हाँ हाँ जी, बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा, ठीक है। हाँ संदीप जी,
1: अभी अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो कह रहा है लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
0: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
1: तुमने आम संगत तुमने बनाया, ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे,
0: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: हाँ, बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

वीकेंड रेजोल्यूशन, लेस स्ट्रेस, मोर बेस, ऑफिशियल मेल्स मंडे देखेंगे. आज सिर्फ प्लेलिस्ट, सब पार्टी प्लान्स डिस्कस होगा ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

हर स्क्वाड में एक फ्रेंड होता है जो हर गोल पे कमेंटरी करता है और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे ओयोंतिका AYANTIKA। आई एम अ बॉन्ग एंड हियर्स योर नेक्स्ट सॉन्ग ऑन क्लब में जी।

0: Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, Oyon Thika, your host for the night on Club Mirchi.

एक मेमोरी होता है और हर वीकेंड का एक एंथम हो सकता है. अगला गाना वही बन जाए आपके लिए. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एक साथ. दिस इज क्लब मिर्ची बेबी.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन.

शूट आउट हो या अंताक्षरी, प्रेशर सब जगह होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ मिस भी किया तो अगला गाना आपको फिर डांस करवा देगा। ऑफ कोर्स ऑन क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो, दे गा विद यू टुनाइट।

वीकेंड ऑफिशियली तब शुरू होता है जब वॉल्यूम बटन ऊपर जाता है, तो स्पीकर्स रेडी रखिए क्योंकि क्लब मिर्ची की पार्टी अभी तो बस वार्म अप ही कर रही थी। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गेट।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

बस दोस्तों, आज की पार्टी यही फुल टाइम विसल लेती है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ। फुटबॉल का जोश, वीकेंड का स्वैग और म्यूजिक की ये एनर्जी हमेशा साथ रखिए। सेफ रहिए, रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट कीजिए, बारिश का मजा लीजिए और याद रखिए, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगले वीकेंड फिर मिलेंगे और फिर मचाएंगे फुल ऑन हंगामा। टिल देन कीप द म्यूजिक लाउड, द स्माइल्स लाउडर। दिस इज योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका, साइनिंग ऑफ फॉर द वीकेंड। टाटा।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे. हम सेकंड वाला चूज करते हैं. ऑन क्लब मिर्ची, रेडी फॉर अनदर बैंगर. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर टेक आउट टुगेदर बेबी.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो हेलो बेटा नवनीत
2: आप कौन
1: पापा कहाँ हैं
2: पापा तो बाहर हैं आप बताइए
1: बेटा ऐसा है आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे को बता रहा था आशीष आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उसे बात कर लेना फोन पे कभी उससे पूछ लेना मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है चलो हर बच्चा कर देता है लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा वो किसी को डांट नहीं सकता अच्छा बेटा तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या
2: लेकिन आपको काम क्या
1: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था
2: पापा ने कहा था
1: चुप कर पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने उठा के पटक के रख दूंगा बता रहा हूँ मदर को
2: क्या हुआ अंकल
1: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं उनको कुछ जरूरी काम था आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में
2: अब मुझे क्यों डांट
1: चुप कर
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से आप मेरी बात सुनो मैं पापा से बात कर लूं
1: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं क्यों कर रहा था तूने
2: पापा को ऐसे किस बात का मुझे ये भी नहीं
1: पापा को किस बात का बुरा लगा इससे मेरे को क्या लेना देना है असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना
2: लेकिन बुरी क्या
1: अंकल कल भी आंखो एक मारूंगा
2: बदतमीजी क्या
1: करी ये अपने पापा से पूछना ना मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं
2: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में
1: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं
2: ठीक है मैंने वो भी कर लिया मैं बदमाशी
1: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे
2: क्या बोलूं
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था तुम रेडियो मिर्ची पे
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को
1: चुप कर मारूंगा घुमा के पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो ऑन अ राइड

आप घर पे हो तो लिविंग रूम को स्टेडियम बना दो, और अगर ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी के स्पीकर्स को कॉन्सर्ट बना दो। वीकेंड सिर्फ 2 दिन का होता है, एनर्जी अनलिमिटेड होनी चाहिए। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड।

सबसे बड़ी ट्रॉफी क्या है पता है? मंडे को ये कह पाना, बॉस वीकेंड वाज वर्थ इट। तो छोड़ो सारी टेंशन और चलो नेक्स्ट ट्रैक के साथ सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naviyat wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो,
2: हाँ बोलो, कौन?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ. आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए.
2: हाँ बोल, कौन रहा है?
3: बोल कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की. नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ.
2: बोल कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए.
2: हाँ बोला था.
3: ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार. आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने.
2: पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ.
2: हाँ बोलो.
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर. ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार. आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने.
2: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ. आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए.
2: हाँ हाँ बोला था. हुआ क्या है, कुछ तो बताओ.
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ. यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर.
2: कब आया था? कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके.
2: तो कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में. बाहर निकालो यार.
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने.
3: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था. मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर.
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार.
2: सीवर में मरा रहा है तू?
3: गाली तो मत दो.
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा. काम करो, एक चीज बोलो.
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ू को
4: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया.
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो.

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, योर होस्ट फॉर द नाइट ऑन क्लब मिर्ची.

एंड क्लब मिर्ची में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली। मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन इज विनिंग बिकॉज द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड। आई एम योर होस्ट मिर्ची ऑन योर ओन थिंग एंड दिस इज क्लब मिर्ची, द साउंड ऑफ द फ्यूचर इज

वीकेंड की बारिश वाली रात और दोस्तों का साथ, बस एक चीज मिसिंग है, थोड़ा और वॉल्यूम। तो स्पीकर्स को काम पे लगाइए, क्लब मिर्ची विद डीजे रिची और मिर्ची ऑन द गाइस इन फुल पावर।

Connect your soul. Connect your body. Enter the simulation.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन.

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे। हम सेकंड वाला चूज करते हैं। ऑन क्लब मिर्ची, रेडी फॉर अनदर बैंगर। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर टिकट टुगेदर।

I'm not sure if I'm going to be able to do it.

सा रिमाइंडर बारिश में रोज स्लिपरी होते हैं. स्पीड थोड़ी कम रखिए, हेडलाइट्स ऑन रखिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए. वीकेंड तभी परफेक्ट है जब आप और आपके अपने सेफली घर पहुंच जाए. माइंड द रोड्स एंड वी माइंड द म्यूजिक ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची.

Janam sab ja karo, janam sab ja karo, janam sab ja karo.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
2: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
3: 7,500 रुपए का।
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मेरे मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम ही देख लो, ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे।
2: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
3: अरे यार
2: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोचने दे ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
2: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
3: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
2: तुमने आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना भैया, पैसे भाड़ में
3: गए। आपकी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

जरूर कीजिए, लेकिन अगर ड्रिंक किया है तो स्टीयरिंग व्हील को टच भी नहीं करना। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची। कैब बुक कीजिए, डेजिग्नेटेड ड्राइवर चूज कीजिए या किसी दोस्त का हेल्प लीजिए। एक स्मार्ट डिसीजन पूरी रात को हैप्पी एंडिंग देता है, रिमेम्बर दैट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

वेलकम बैक दोस्तों, अगर आप घर पे हो तो लिविंग रूम को स्टेडियम बना दो, और अगर ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी के स्पीकर्स को कॉन्सर्ट बना दो। वीकेंड सिर्फ दो दिन का होता है, एनर्जी अनलिमिटेड होनी चाहिए। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लेट्स रोल।

ही सिखाई है, टीम वर्क विंस। और वीकेंड भी तभी यादगार बनता है जब अपनी गैंग के साथ हंसी, गाने और मेमोरीज शेयर की जाए। सो कीप द वाइब्स हाई एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका।

ऑफिशियली तब शुरू होता है जब वॉल्यूम बटन ऊपर जाता है, तो स्पीकर्स रेडी रखिए क्योंकि क्लब मिर्ची की पार्टी अभी तो बस वार्म अप ही कर रही थी। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका टुगेदर।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर ओन थिंग.

खिलाड़ी यही फुल टाइम विसल लेती है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ, फुटबॉल का जोश, वीकेंड का स्वैग और म्यूजिक की ये एनर्जी हमेशा साथ रखिए। सेफ रहिए, रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट कीजिए, बारिश का मजा लीजिए और याद रखिए, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगले वीकेंड फिर मिलेंगे और फिर मचाएंगे फुल ऑन हंगामा। टिल देन कीप द म्यूजिक लाउड, द स्माइल्स लाउडर। दिस इज योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका साइनिंग ऑफ फॉर द वीकेंड। टाटा।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vida la burga.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल कल देखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी
3: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: कौन?
2: हेलो।
1: हाँ बोलो कौन?
2: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ बोल, कौन रहा है?
2: बोल कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
1: बोल कौन रहे हो?
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ बोला था।
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
2: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
1: हाँ बोलो।
2: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
1: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
2: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
1: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
2: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर।
1: कब आया था? कब घुसा अंदर?
2: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
1: तो कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
2: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
1: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और की सीवर में घुस गया?
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
1: सीवर में मरा रहा है तू?
2: गाली तो मत दो।
1: हेलो
2: हेलो,
1: फिर फोन कर दिया तूने?
2: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा। काम करो, एक चीज बोलो।
1: क्या बोलो?
2: कुकड़ू को
3: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या?
1: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
1: हिट

0: Radio Mitri, New York. South Asia's number one radio station. It's hot. Radio Mitri.
1: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ

के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: Milci. Iskra bana, puska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Milci burka. हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या लगी?
2: अंकल कल देखो एक मारूंगा।
1: ने बदतमीजी क्या करी?
2: बेटा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को। बेटे
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: रेडियो मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
1: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
1: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस का कट गए।
1: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
1: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
1: मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
1: ये भी तुम्हें देख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
1: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें जैसे रख लो, ये बीच में रख लो हमें जैसे।
2: अरे यार
1: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचना चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
1: बताइए,
2: आप मुझे आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
1: बोलो बोलो
3: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Gabbana.
1: Murga, murga. La vida la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: हेलो
4: हाँ
3: बोलो कौन
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोल कौन रहा है
4: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
3: बोल कौन रहे हो
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोला था
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: पूछ के घुसे थे क्या अंदर
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
3: हाँ बोलो
4: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
3: कब आया था कब घुसा अंदर
4: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
3: तो कहाँ करा तो नहीं हो गया
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
4: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
3: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
3: सीवर में मरा रहा है तू
4: गाली तो मत दो
3: हेलो
4: हेलो
3: फिर फोन कर दिया तूने
4: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
3: क्या बोलो
4: कुकड़ुकू
5: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया
3: कुकड़ुकू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: तू दाढ़ी पे जो हाथ फेरे सारी दुनिया हिले।

पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

0: हरगिज झुकेगा नहीं साला,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: यादें कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है। इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं। हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है। आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन। और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है नंबर 20 की पोजीशन पर। मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है। द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज सैयारा
3: नंबर 20।

Cocktail 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी-कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा फैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा और नंबर 17 दिस इज मस्कारा. नंबर 17.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: वेरी फाइन थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
3: नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे।
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: मतलब ये गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह।
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: शालो
3: कच्चा
2: धागा,
3: रेस
2: लगा लो,
3: दस
2: पत्ते तोड़े,
3: एक पत्ता कच्चा। इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े
2: दस पत्ते तोड़े,
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
2: ओके ओके सॉरी, हिरण का बच्चा।
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
3: मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा।

0: यार ये कोई सुनेगा तो
1: नहीं सर ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 16

Wow, the craziest songs from Dhurandhar 2. Ye tha Main Aur Tu by Jasmine Sanilas. And I don't know agar Dhurandhar ek sachi kahani hai ya it's fiction. But Bollywood filmmakers ko sachi kahaniya pasand badi hai. Which is why we love our biopics. And ek aur biopic dekhne ke liye ab janta utsuk hai. Sourav Ganguly ki biopic Dada. क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का वेल क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती सोचिए सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल एंड देन आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम उस वक्त सौरव कप्तान थे फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन द ह्यूमन बींग भी तो दिखाओगे और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं क्रिकेटर को नहीं इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं वक्त मांगती है सिर्फ एक एमएस धोनी की बायोपिक थी विच वर्क फॉर सम रीजन पर उसके अलावा 83 अजहर नॉट सो मच नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में पल पल जीना मुहाल गाना याद है ना पल ये गाना है क्यों फ्रॉम वेलकम टू द जंगल एंड इट्स हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20 नंबर

0: चिकन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट.
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

शरारत। 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया, आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, laga ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. And then तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक इज द सेम टीम दैट इज गिविंग अस वे जुनून इन आवारापन टू, इमरान हाशमी और उनके साथ इस गाने के कंपोजर मिथुन. और इसी कॉम्बो ने एक और गाने में जादू बिखेरा था, जब कई बार दिल टूटने के बावजूद फिर मोहब्बत करने चलता है.

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूँ यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। एंड पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग दैट नाउ मोर देन एवर बिफोर। यू नो, दे डिड काइंड ऑफ इन लाइक 13-15, देयर वाज लुटेरा एंड रामलीला इन 2013, देयर वाज दिल धड़कने दो बाजीराव मस्तानी इन 15, नाउ इट्स लाइक खिलजी, सिम्बा एंड करनी बॉय। इट्स लाइक wow, so it's a conscious endeavor to you know showcase that versatility and it's all happening, so I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer, ab wo superstar ban chuka tha, use apne talent ka andaaza tha, use pata tha ki wo kitna acha actor hai, Ronis ki jagah yakeen aa chuka tha, lekin uski energy abhi utni hi badi thi jitna uska ambition, lekin abhi wo bechain tha. Aur phir aaya teesra Ranveer, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। आई टोल्ड यू, आज वी अबाउट टू गेट अ ब्रांड न्यू नंबर वन सॉन्ग। लेकिन ये गाना ब्रांड न्यू है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा नंबर वन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। द नंबर वन सॉन्ग ऑन द मिर्ची टॉप 20।

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। It's time to end this episode of the Mirchi Top 20, but फिर मिलूंगा। In fact, मैं भी वापस आऊंगा। So until the next time, Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 8।

यार एक बात माननी पड़ेगी, इट फील्स सो गुड टू हियर नीरज श्रीधर वॉइस अगेन, लेकिन इसी गाने ने मुझे एक सच्चाई से मिलवा दिया। हॉलीवुड अपने लेजेंड्स को सेलिब्रेट तो बहुत करता है, बस उन्हें हायर करना बंद कर देता है। नीरज श्रीधर की आवाज आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है, फिर नए गाने उनके पास क्यों नहीं जाते? और सिर्फ सिंगर्स ही नहीं, कंपोजर्स भी। एक सवाल आप खुद से पूछिए, आखिरी शंकर एहसान लॉय एल्बम आपने कौन सी सुनी थी, जिसके गाने आपने रिपीट पर सुने, जिसके लिरिक्स आज भी याद है आपको? सितारे जमीन पर जो आमिर खान की फिल्म थी उसमें उन्हीं का म्यूजिक था, लेकिन एल्बम वैसे कनेक्ट नहीं कर पाई जितना सबने सोचा था। और उसके बाद इंडस्ट्री फिर नए नामों की तरफ मुड़ जाती है। अजीब बात है राइट, अब से एक महीने बाद we all will be celebrating 25 years of one of the most iconic albums ever. Yes, sir.

चाहता है। पूरा बॉलीवुड इस एल्बम को सल्यूट करेगा, उसकी लेगेसी सेलिब्रेट करेगा, लेकिन जब अगली बड़ी फिल्म बनेगी फोन शायद किसी और कंपोजर को जाएगा। नया हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन नया हमेशा बेहतर भी नहीं होता। नंबर 6 पर है कहर बाय गुरु रंधावा, और शायद यही आज के बॉलीवुड म्यूजिक का टेम्पलेट है। नंबर 6

0: Kiran ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, sabka bana. Bana. Murga, murga. Nafis wala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
3: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: चोरी करने ले गया,
3: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
2: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
3: मेरी बात सुन,
2: माँ का तू मुझे मरवाएगा। कल तुझे मुझे फोन कर दिया,
3: मेरी बात सुन।
2: हेलो
3: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है,
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
0: सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, नंबर 5।

शरारत। 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया, आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की

इश्क कोना है, गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, laga ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. And then तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. My special request of the week is the same team that is giving us Ve Junoon in Awarapan 2. Imran Hashmi aur unke saath is gaane ke composer Mithun. Aur isi combo ne ek aur gaane mein jadu bikhera tha. Jab kai baar dil tootne ke bawajood phir mohabbat karne chalta hai. Special

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 3।

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूँ यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Ramleela in 2013. Yeah. There was Dil Dhadakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Karni Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility, and it's all happening. So I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Use apne talent ka andaaza tha. Use pata tha ki wo kitna achha actor hai. Ronis ki jagah यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन, लेकिन अब भी वो बेचैन था। और फिर आया तीसरा रणवीर, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से, जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। I told you, आज we about to get a brand new number one song। लेकिन ये गाना brand new है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा number one होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। The number one song on the Mirchi Top 20. Number 1, 2.

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। इट्स टाइम टू एंड दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, बट फिर मिलूंगा। इनफैक्ट मैं भी वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: I like the way you move right there.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjet vala burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Could I speak to Komal, please?
2: Speaking.
3: Komal, hi. I am Ravi. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
3: राइट.
2: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: साढ़े दस बजे.
3: साढ़े दस बजे क्यों गई थी आप? साढ़े दस बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको साढ़े दस बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई साढ़े दस बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो. नहीं,
3: गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे साढ़े दस बजे?
2: एडवाइस.
3: खुद गुस्से में आप क्यों गई साढ़े दस बजे?
2: आप हद से ज्यादा
3: क्या बात कर रहे हैं?
2: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
2: की सुरक्षा की बात
3: किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? साढ़े दस बजे क्यों गई आप? सागे
2: फोन
3: रखिए आप, बेकार की बात. हेलो.
2: हेलो.
3: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को लेकर. कोमल कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहेंगे साढ़े दस बजे?
2: मिस्टर, ये आप हैं. मेरे को गुस्सा दिलाया.
3: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Mirci. Iskabala, puskabala, sakabala. Yabala. Burga, burga. Na vidbala, burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: थैंक यू
2: अतुल. वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: आई नो वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा.
2: हाँ, नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: मतलब गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो.
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह.
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो
1: शालो.
2: कच्चा
1: धागा.
2: रेस
1: लगा लो.
2: दस
1: पत्ते तोड़े. एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे. दस पत्ते
1: तोड़े
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े.
1: दस पत्ते तोड़े.
2: हिरण का बच्चा. हिरण का बच्चा. हिरण का बच्चा.
1: हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू.
1: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू.
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को. मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप को ही बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कोई सुनेगा
2: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
2: स्पीकिंग
3: कोमल, हाय आई एम रवि. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
2: लगता क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
3: ओके.
2: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है. इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
3: ओके.
2: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
3: हाँ.
2: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
3: कितने बजे गई थी आप?
2: 10:30 बजे.
3: 10:30 बजे क्यों गई थी आप? 10:30 बजे
2: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
3: किस तरह का काम पड़ गया था आपको 10:30 बजे, जो आपको इतनी हबड़ तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
2: मुझे बड़ी जरूरी काम
3: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेके कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई 10:30 बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
2: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
3: गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे 10:30 बजे?
2: ये खुद गुस्से में हो.
3: खुद गुस्से में आप क्यों गई 10:30 बजे?
2: आप हद से ज्यादा
3: हाँ क्या बात कर रहे हैं?
2: मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
3: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
2: नहीं कर सकते आप.
3: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा हो, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
2: की सुरक्षा की बात, लड़कियों सुरक्षा की साथ
3: किस तरह की. नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? 10:30 बजे क्यों गई आप? सागर
2: फोन
3: रखिए आप, बेकार की बात. हेलो
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ई टीजिंग को लेकर.
2: ओके ओके ओके ओके ओके ओके
3: ओके मेरी बात सुनिए. कोमल आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं थी 10:30 बजे?
2: मिस्टर ये आप हैं
3: जी, मैं
2: मेरे को गुस्सा दिलाया. आपको पकड़ के ना ठीक करना पड़ेगा.
3: चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
2: ओके कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

Radio Mitchell, New York. It's hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virba la burga. Milci, burga. Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: थैंक यू
2: अतुल. वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ,
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
1: मतलब क्या परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: लगे हुए गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह. आओ मिलो,
1: आओ मिलो,
2: चिलो शालो,
1: चिलो शालो,
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा,
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े,
1: तोड़े,
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को.
3: मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कोई सुनेगा तो
3: नहीं सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: या यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज। ओके,

0: सारा मेरा। उप्स।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirci, burga. Hello.
2: Hello. Hello.
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
2: साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो ये यार, ये ड्रिल मशीन कैसे दी है? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने ड्रिल मशीन के, सारे जाग जाएंगे यार।
1: तू चोरी करने के लिए गया?
2: तुमने पहले क्यों बताया?
1: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
2: एक बात सुन,
1: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
2: बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: बजे ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना,
0: हिट

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

Radio Mitchie, New York. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: मिर्ची पर अब बारी है फॉर असली पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑफकोर्स एज अ स्पेशल स्पॉटलाइट. ऑल दिस एंड मोर, तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10. हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी, दीप क्लेयर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है साडी सुन. तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, साडी सुन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी, पांच हफ्तों से इस काउंटडाउन पर अपना धावा बना के बैठा है. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय.
1: नंबर 10.
3: हो चुप कर, लंघ जावे कोल दी तू, संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे.

0: कहाँ है वो लोग, नजर नहीं आ रहे जो बोलते रहते हैं कि सारे इंडिपेंडेंट गाने एक ही जैसे साउंड करते हैं। ये वाला सुनिए, अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। व्हाट अ बैंगर ऑफ अ सॉन्ग, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाएं, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है, पूरे दिन इंटरनेट पे बैठे रहते हैं तो वही गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो बिंदास आके हिट में आप। इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स बाय एन आर्टिस्ट जिनकी आवाज सुनते ही ना, मतलब मेरे को एकदम वो मजे आ जाते हैं। यू नो देर आर दीज वॉइसेस विच मेक यू फील रियली हैप्पी। वो बोलते हैं खनक है उनकी आवाज में। आई एम टॉकिंग अबाउट एश किंग, जिन्हें मोस्ट पॉपुलरली हम जानते हैं एज वॉइस बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक
2: आई लव यू।
0: कुछ बात उनकी आवाज में सुनते ही ऐसा मूड अच्छा हो जाता है। एंड इस आवाज को ढूंढ के हमारे पास लाए थे AR रहमान। साल 2009 में दिल्ली 6 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया था। एंड द फनीएस्ट पार्ट अबाउट दैट कोलैबोरेशन इज दैट उस समय एश किंग की हिंदी डिक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, वो बस UK से आए थे, बट AR रहमान सर ने उन्हें सुना एंड ही वॉज लाइक आप मेरे लिए ये गाना गा रहे हैं। एंड तब एश किंग ने AR रहमान के लिए ये वाला गाना गाया।
2: गिरा कहीं पर दफतन,
0: गाने का नाम है दिल गिरा दफतन। दिल्ली 6 की बहुत बड़ी एल्बम मसक अली अर्जियां के पीछे अगर इस गाने को भूल गए थे तो वापस इसको याद कर लीजिए। तब से लेके अब तक एश किंग हैज बीन द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ द ग्रेट सॉन्ग्स लाइक मेहरबान, TMO। 2019 में उनका एक इंडी पॉप गाना आया था कॉल्ड हाई ओए।

0: There's something about Ash King's voice which just naturally draws you towards this song. आप connect कर जाते हो. वो कभी गाने पे हावी नहीं होते हैं, बल्कि he lets you experience that song. तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए. नई नवेली entry debut कर रही है सीधा Ash King की आवाज में. गाने का नाम है किनिया सोनी. ये गाना debut कर रहा है this week on Gaana number 8. You are listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 8.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Murga, murga. Nafis wala murga. Mirchi murga.
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू कोमल प्लीज?
3: स्पीकिंग.
4: कोमल हाय, आई एम रवि. हमारी कंपनी ने एक्चुअली ईव टीजिंग को लेके दिल्ली में जो लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, लड़कियों को परेशान करते हैं, उसके खिलाफ एक इनिशिएटिव शुरू किया है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको खुद कोमल को ये लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियाँ बहुत इनसिक्योर हैं?
3: लगता है क्या है, बिल्कुल ऐसा है.
4: ओके.
3: हम लोग निकल नहीं सकते हैं, हम लोग इनसिक्योर हैं. इधर से कमेंट पास होते हैं, उधर से बसेस में हमारा ट्रेवल करना मुश्किल है.
4: राइट.
3: इनफैक्ट मैं अपना एक केस बताना चाहती हूँ. मैं किसी काम से साकेत गई थी शाम को.
4: ओके.
3: मतलब थोड़ी रात सी हो गई थी.
4: हाँ.
3: तो वहाँ मुझे छेड़ा.
4: कितने बजे गई थी आप?
3: साढ़े दस बजे.
4: साढ़े दस बजे क्यों गई थी आप? साढ़े दस बजे
3: मेरे को एक काम था वहाँ पे.
4: किस तरह का काम पड़ गया था आपको साढ़े दस बजे, जो आपको इतनी हबड़तबड़ में अकेले जाना पड़ गया?
3: मुझे बड़ी जरूरी काम
4: नहीं. कितना आपको मालूम है ईव टीजिंग को लेकर कितना हम परेशान हैं, लड़कियां छेड़ रही हैं. आप निकल गई साढ़े दस बजे वहाँ पे. आपको खुद को पता है आप क्या कर रही हैं?
3: एक सेकंड, आप तो गुस्से में हो.
4: नहीं, गुस्से में नहीं, गुस्से की बात मेरी बात सुनिए. आप लड़कों को बुरा कहती हैं. आप क्यों गई थी वहाँ पे साढ़े दस बजे?
3: एडवाइस,
4: खुद गुस्से में. आप क्यों गई साढ़े दस बजे?
3: आप हद से ज्यादा
4: हद से क्या बात कर रहे
3: हैं? मेरे को ईव टीजिंग कर रहे हैं.
4: ईव टीजिंग मैं आपको कर रहा हूँ? आप आगे बढ़ रही है बहुत ज्यादा. मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ.
3: नहीं कर सकते आप.
4: मैं एक इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ जिसको लेके हम चाहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों को कमेंट पास ना करें, लड़कियों
3: की सुरक्षा की बात
4: करें. किस तरह की? नहीं, आप किस तरह की बात कर रही है? साढ़े दस बजे क्यों गई आप? सागे फोन रखिए आप, बेकार की बात. हेलो.
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू कोमल? कोमल हाय, हम ईव टीजिंग को लेकर. कोमल
5: कोमल, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, पूरी दिल्ली आपको सुन रही है. मैंने मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ. आप साकेत क्यों कहीं थी साढ़े दस बजे? चलिए मैं ठीक हो जाऊंगा. मैं कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा. मेरा मतलब मैं छेड़ता भी नहीं हूँ. मेरे साथ जरा हंस के बोल.
3: ओके, कुकड़ू कू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: आदित्य रिखारी कुटले खां की आवाज रावटोर का म्यूजिक कोक स्टूडियो भारत का गाना दिस वाज ए अजनबी पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना अनूप जैन की आवाज में एक गाने का नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार अर्ज किया है वाज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक, ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप स्टार्स ऑफ द म्यूजिक सीन। इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना ए अजनबी इन द वॉइस ऑफ आदित्य रिखारी एंड कुटले खां, एक कोक स्टूडियो भारत का गाना। किसी भी आर्टिस्ट के लिए गाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर आर्टिस्ट का सपना होता है एक कोक स्टूडियो भारत का गाना करना, एंड आदित्य रिखारी पिछले कुछ ही सालों में वो चोजन पॉप स्टार बन चुके हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ना, ये स्टार बनने के मायने बदल गए हैं। स्पेशली पॉप म्यूजिक में रिवाइंड करूं, 20 साल पहले आप चूज किए जाते हो, आपकी एल्बम आती है, आपको ब्रेक मिलता है, तब आप फेमस होते हैं। लेकिन अब पहले ऑडियंस आपको देखती है, डिसाइड करती है, आपके साथ एंगेज करती है, तब आपको आपका ब्रेक मिलता है। एंड आदित्य रिखारी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली के एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर लॉकडाउन के दौरान अपने कमरे से अपने गाने अपलोड कर रहे थे, पर उनके गाने

ऐसे फॉरवर्ड हो रहे थे, वायरल हो रहे थे हर जगह, बिकॉज वो हमको हमारी ही कहानी सुना रहे थे. एंड देन उनका गाना आया कॉल्ड फासले. इस गाने ने उनको म्यूजिक मैप में पिन कर दिया था. एंड देन केम समझो ना. इस गाने के बारे में तो मैं जितनी बात करूं कम है. इट गॉट अडैप्टेड इन अ कार्तिक आर्यन मूवी, जो एक दिल्ली से आए यंग सिंगर सॉन्गराइटर के लिए बहुत बड़ी बात है. पर मेरे हिसाब से आदित्य रिखारे का सबसे बड़ा गाना इस साहिबा. उनके जितने कॉन्सर्ट होते हैं, वो जब भी इंटरव्यू करते हैं, आप कहीं चले जाए, एक गाना जो हर फैन उनसे डिमांड करता है कि प्लीज ये वाला गाना गा दीजिए, वो गाने का नाम है साहिबा. तो अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन आदित्य रिखारेज बेस्ट सॉन्ग दिस इज साहिबा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: दिलजीत दोसांझ, सिया, डेविड गेटा का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। रांझा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आए, मेरे साथ कनेक्ट करें, कोई गाना सजेस्ट करना है, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को।
0: The song we're going to feature this week is

कभी। गाने का नाम है बूंदे बाय द सिल्क रूट। ये गाना 1998 में आया था, सिल्क रूट द बैंड की डेब्यू एल्बम बूंदे का ही पार्ट था। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी, सिल्क रूट ने पॉप म्यूजिक स्पेस में अकूस्टिक गिटार, फोक इन्फ्लुएंसेस एंड सॉफ्ट मेलोडी, वेरी पोएट्री फर्स्ट गानों को इंट्रोड्यूस किया था। बैंड के लीड वोकलिस्ट मोहित चौहान, बैंड मेंबर्स अतुल मित्तल, केम त्रिवेदी एंड केनी पुरी, उनकी म्यूजिक आइडेंटिटी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उनकी म्यूजिक वीडियोज, द वे देयर म्यूजिक ट्रैवल्ड इज समथिंग जो आज भी हम जानते हैं। इसी एल्बम का पार्ट था डूबा डूबा, जो हर घर तक पहुंच गया। पर उस एल्बम में और बहुत सारे ऐसे जेम्स हैं जिन्हें आपको कभी फुर्सत लेके सुनना चाहिए। एंड अगर आप सच में उनकी म्यूजिकलिटी को जेन्युइनली एंजॉय करना चाहते हो, तो ये वाला गाना बूंदे उसे परफेक्टली डिफाइन करता है। गाने के लिरिक्स प्रसून जोशी ने लिखे थे और उसमें बारिश ना सिर्फ ऐसे मौसम का पार्ट नहीं है, बल्कि बूंदों को यादों से कंपेयर किया गया है, किसी की खुशबू से कंपेयर किया गया है, एक ऐसी प्रेजेंस से कंपेयर किया गया है जो हमारे सामने नहीं है बट आप हर जगह महसूस करते हैं। आज भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो प्रोडक्शन में भी आपको 19-20 लग सकता है, बट द इमोशन इज सो फ्रेश एंड शायद इसीलिए ये एक प्रॉपर क्लासिक है। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सिल्क रूट द बैंड का गाना मोहित चौहान की आवाज में, दिस इज बूंदे, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

मैन ओ मैन, व्हाट इज दिस सॉन्ग? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की मेमोरी में ऐसे फ्लोट कर रही थी. मोहित चौहान की आवाज, सिल्क रूट द बैंड का गाना, दैट वॉज बूंदे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. Pinch me, Ashkai, because I think this is one of the best picks we've had so far. At RJ Kanak on Instagram par aao, Ashkai, my sound producer, aur main aapki sari suggestions ko bahut seriously lete hain. 90s 2000s ka wo indie pop gana jo aaj bhi aapke liye super special hai, humse aake share kariye. We might feature your song next week. Now back to the countdown, agle wale gaane ki bari. It is again a Diljit Dosanjh song. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम किया ये गाना. गाने का नाम है डीलर. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. डीलर इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: Radio Mitchy, New York. It's hot.
1: इंडी टॉप 10
2: कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
3: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, लेकिन एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर इस हफ्ते हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी और गाना नंबर 9। एक नई नवेली एंट्री, एश किंग का गाना किनिया सोनी ने डेब्यू किया है और गाना नंबर 8। This song is getting stronger by the week. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है this week on गाना नंबर 7।
4: कायर जो थे वो शायर बने।
3: उसके बाद आदित्य रिखारी, रैबिट और कुटले खां का गाना, एक और कोक स्टूडियो भारत का गाना ए अजनबी on गाना नंबर 6। संजू राठौड़ का बैंगल्स on गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ, सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4। बैक टू बैक बाय दिलजीत, उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। एंड नाउ फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बंजारे का गाना बैरन 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2 एंड द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन मिट्टा रौर स्वरा वर्मा की आवाज में, गाने का नाम है शीशा, वंस अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैरन ऑन गाना नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 2।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: यादें कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है। इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं। हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है। आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन। और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है नंबर 20 की पोजीशन पर। मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है। द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज सैयारा
3: नंबर 20।

Cocktail 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी-कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा फैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा और नंबर 17 दिस इज मस्कारा. नंबर 17 इस

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: वेरी फाइन थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा।
3: हाँ, नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
2: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
3: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: कच्चा धागा,
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े,
3: एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे। दस पत्ते तोड़े
2: तोड़े,
3: या मिस्टर श्रीवास्तव दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस दस दस पत्ते तोड़े,
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
2: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: श्रीवास्तव बोले
3: कुकड़ू को। बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कोई सुनेगा
3: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ये पकड़ा
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 16।

Wow, the craziest songs from Dhurandhar 2. Ye tha Main Aur Tu by Jasmine Sanilas. And I don't know agar Dhurandhar ek sachi kahani hai ya it's fiction. But Bollywood filmmakers ko sachi kahaniyan pasand badi hain. Which is why we love our biopics. And ek aur biopic dekhne ke liye ab janta utsuk hai. Saurav Ganguly ki biopic Dada. क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का वेल क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती सोचिए सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल And then आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम उस वक्त सौरव कप्तान थे फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन द ह्यूमन बींग भी तो दिखाओगे और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं क्रिकेटर को नहीं इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं वक्त मांगती है सिर्फ एक MS धोनी की बायोपिक थी विच वर्क्ड फॉर सम रीजन बट उसके अलावा 83 अजहर नॉट सो मच नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में पल पल जीना मुहाल

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: नंबर 14।

अनपॉपुलर ओपिनियन बट रोम कॉम्स आर डेड। और शायद सबसे दुख की बात ये नहीं है, सबसे दुख की बात ये है कि हमें पता भी नहीं चला कि ये कब हुआ। नंबर 13 पर इस हफ्ते है तुझको फ्रॉम कॉकटेल बाय अरिजीत सिंह। और इस गाने को सुनते ही मुझे वो वक्त याद आ गया जब बॉलीवुड हमें प्यार पर यकीन दिला देता था।

0: एंड देन यू हैड बनी और नैना। हम सबको लगा शायद प्यार और सपने दोनों साथ चल सकते हैं। उसके बाद पता ही नहीं चला रोम कॉम्स कहाँ खो गए। फिल्में आज भी बनती हैं, लड़के लड़कियां आज भी मिलते हैं, डेट्स पे जाते हैं, उनके ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन वो धड़कन, वो तड़प, वो थिएटर से बाहर निकलते वक्त दिल का हल्का सा भर आना, वो कहीं रह गया। रोम कॉम्स आर डेड बट नॉट रोमांस। और फिल्में शायद बुरी हो बट कभी कभी उन बुरी फिल्मों में बहुत अमेजिंग म्यूजिक मिलता है, लाइक अ हंसी तो फंसी। पीपल लव द सॉन्ग ज़हन नसीब द मोस्ट, लेकिन मुझे, वेल आई फेल इन लव विद अ कंप्लीटली डिफरेंट सॉन्ग। आज वी रिवाइंड दिस सॉन्ग बाय सनम पुरी।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: इतने महीने बाद भी आफ्टर वॉचिंग बोथ द फिल्म्स एक बात है जो परेशान करती है मुझे अब भी. इज धुरंधर अ रियल लाइफ स्टोरी? क्या इसके कैरेक्टर्स सच्चे हैं? आखिर सच क्या है? इस हफ्ते एक और जासूस की कहानी रिलीज हुई बाय द नेम ऑफ अल्फा. मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अल्फा देखी और एक बात बार बार सुनने को मिली, पर्सपेक्टिव. और तब मुझे एहसास हुआ कि हर सच के शायद तीन अलग अलग वर्जन होते हैं. एक जो वाकई हुआ है, दूसरा जो हमें बताया गया है, और तीसरा जो हम मान लेते हैं. अब वो चाहे उरी हो, धुरंधर हो या फिर अल्फा हो, सिनेमा सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, वो हिस्ट्री को इंटरप्रेट भी करता है. और वही मेरी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है. मैं हीरो देखने थिएटर नहीं जाता, मैं सच के जितना करीब हो सकता हूं उतना पहुंचना चाहता हूं. बाकी फैसला आप कीजिए. फिल्म किसकी थी, पर्सपेक्टिव किसका था? अल्फा वेल इज गेटिंग मिक्स्ड रिएक्शंस फ्रॉम द ऑडियंस, बट हां, YRF की स्पाई यूनिवर्स पक्का मुश्किल में है. दे बैडली नीड अ रीसेट. नंबर 11 पर है एक और नई फिल्म, बेबी डू डाई डू. आई होप आई गॉट द प्रोनाउंसिएशन राइट. और अफसोस, एक इतनी इंटरेस्टिंग असैसिन थ्रिलर को इंट्रोड्यूस किया गया है इश्क कमीना 2.0 से. कभी कभी सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट फिल्म में नहीं, उसकी म्यूजिक स्ट्रेटजी में होता है.
1: नंबर 11. कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

बॉलीवुड को समर कॉमेडीज बनाना बहुत अच्छी तरह आता है, जैसे अभी चटनी फ्रॉम धमाल 4, भोजपुरी फ्लेवर, फुल ऑन मजे, एंड गाना चलेगा, फिल्म अपना काम कर जाएगी, एंड देन यू हैव अ वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। इसके बारे में ज्यादा कुछ वैसे अब कहने को है नहीं, फिल्म आई फिल्म गई, इन गाना रह गया नंबर 9 पर। लेकिन फिर कुछ फिल्में होती हैं जो सिर्फ रिलीज नहीं होती, एक दौर को डिफाइन कर देती हैं। इस हफ्ते लोग एक फिल्म के 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुल्तान। और मुझे लगता है ये सेलिब्रेशन सिर्फ सुल्तान का नहीं है, ये उस सलमान खान का है जिसके सामने बॉक्स ऑफिस ने घुटने टेक दिए थे। वॉन्टेड, दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो। उस वक्त फिल्म कितनी अच्छी थी ये फ्राइडे के बाद पता चलता था, लेकिन फ्राइडे से पहले एक बात सबको पता होती थी, सलमान खान की फिल्म एक त्योहार है। फिर सुल्तान आई और आज अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो लगता है कि वो सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, शायद वो एक ईरा का लास्ट स्टैंडिंग ओवेशन था। उसके बाद हिट से ज्यादा सवाल आए ऑन फिल्म्स लाइक रेस 3, दबंग 3, अंतिम, राधे, किसी का भाई, किसी की जान, एंड देन सिकंदर। और पिछले 10 सालों से फैन सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, दैट वन सलमान खान फिल्म जो थिएटर्स में वो पागलपन फिर क्रिएट कर दे, जिसके बाद पूरा देश सिर्फ एक ही बात कहे, भाई इज बैक। मेरा पिक ऑफ द वीक उसी फिल्म से है जिसके 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं सब, पापॉन की आवाज में। दिस इज बुल्लेया फ्रॉम सुल्तान, अ विशाल शेखर कॉम्पोजिशन। पिक ऑफ द वीक।

यार एक बात माननी पड़ेगी, इट फील्स सो गुड टू हियर नीरज श्रीधर वॉइस अगेन, लेकिन इसी गाने ने मुझे एक सच्चाई से मिलवा दिया। हॉलीवुड अपने लेजेंड्स को सेलिब्रेट तो बहुत करता है, बस उन्हें हायर करना बंद कर देता है। नीरज श्रीधर की आवाज आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है, फिर नए गाने उनके पास क्यों नहीं जाते? और सिर्फ सिंगर्स ही नहीं, कंपोजर्स भी। एक सवाल आप खुद से पूछिए, आखिरी शंकर एहसान लॉय एल्बम आपने कौन सी सुनी थी, जिसके गाने आपने रिपीट पर सुने, जिसके लिरिक्स आज भी याद हैं आपको? सितारे जमीन पर जो आमिर खान की फिल्म थी उसमें उन्हीं का म्यूजिक था, लेकिन एल्बम वैसे कनेक्ट नहीं कर पाई जितना सबने सोचा था। और उसके बाद इंडस्ट्री फिर नए नामों की तरफ मुड़ जाती है। अजीब बात है राइट? अब से एक महीने बाद we all will be celebrating 25 years of one of the most iconic albums ever. Yes,

चाहता है। पूरा बॉलीवुड इस एल्बम को सल्यूट करेगा, उसकी लेगेसी सेलिब्रेट करेगा, लेकिन जब अगली बड़ी फिल्म बनेगी फोन शायद किसी और कंपोजर को जाएगा। नया हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन नया हमेशा बेहतर भी नहीं होता। नंबर 6 पर है कहर बाय गुरु रंधावा, और शायद यही आज के बॉलीवुड म्यूजिक का टेम्पलेट है। नंबर 6।

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: भैया, आवाज़ साफ नहीं आ रही। कम आ रही है आवाज़।
1: भाई साहब, आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
0: हाँ जी।
1: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो ये यार, ये ड्रिल मशीन कैसे दी है? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
0: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
1: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये क्या, बंद कर इसको, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
0: मैं
1: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी, इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब, ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
0: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
1: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
0: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
1: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
0: चोरी करने के लिए
1: तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
0: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
1: मेरी बात सुन,
0: माँ का तू मुझे मरवाएगा। मुझे फोन कर दिया बहन,
1: मेरी बात सुन।
0: हेलो
1: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
2: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
0: कहाँ से बोल रहे भैया?
2: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
1: अब ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
3: इट्स पटाक। सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, नंबर 5।

शरारत 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

0: Now on first listen, laga ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. And then तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक इज द सेम टीम दैट इज गिविंग अस वे जुनून इन आवारापन टू, इमरान हाशमी और उनके साथ इस गाने के कंपोजर मिथुन. और इसी कॉम्बो ने एक और गाने में जादू बिखेरा था, जब कई बार दिल टूटने के बावजूद फिर मोहब्बत करने चलता है.
1: स्पेशल रिक्वेस्ट.

0: सुरेन के साथ only on मिर्ची इट्स हॉट
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना
2: हिट गाना

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूँ यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Ram Leela in 2013. Yeah. There was Dil Dhadakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Karthi Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility, and it's all happening. So I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Use apne talent ka andaaza tha. Use pata tha ki wo kitna achha actor hai. रॉनस की जगह यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन, लेकिन अब भी वो बेचैन था। और फिर आया तीसरा रणवीर, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से, जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। आई टोल्ड यू, आज वी अबाउट टू गेट अ ब्रांड न्यू नंबर वन सॉन्ग। लेकिन ये गाना ब्रांड न्यू है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा नंबर वन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। द नंबर वन सॉन्ग ऑन द मिर्ची Top 20. Number 1.

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। It's time to end this episode of the Mirchi Top 20, but फिर मिलूंगा। In fact, मैं भी वापस आऊंगा। So until the next time, Sirin, over and out.
1: Sirin ke saath, only on Mirchi. It's hot.